अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252578 6।
4: जी हा 3135525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

साईं मुंहिंजा सियाणनि सच चयो आहे त ॻाल्हाइण खां अॻु जेकॾहिं सोची समझे ऐं तोरे त खे ॻाल्हाइजे त वॾे कंहिं नुक़सान खां माण्हू बची सघे थो ऐं उहा ई ज़बान ऐं इंसान खे उस में बि विहारे त वरी शाम में बि विहारे। सियाणनि जो चवणु आहे त थधो दिलो पाण खे शाम में रखाईंदो आहे। चयो वञे थो त इंसानी ज़हन सभ खां वधीक शकी आहे, उन मां पूरो फ़ाइदो वठण लाइ उन खे सुकून ऐं इत्मीनान वारी हालत में रखण बि तमामु ज़रूरी आहे। पंहिंजनि वॾड़नि या नेक माण्हुनि जी असांखे हमेशह उहा ई हिदायत मिलंदी रहंदी आहे त माण्हुनि सां नफ़रत बदिरां सणनि मोहबत खे रहबर बणायो। क़ुरान पाक में इरशाद रबी आहे त माण्हुनि सां मिठो ॻाल्हायो, मतिलब त असीं माण्हुनि सां मिठा ऐं सुठा लफ़्ज़ ॻाल्हाए परावन खे बि पंहिंजो करे सघूं था। असां दुश्मनी बदिरां दोस्ती, नफ़रत बदिरां मोहबत ऐं भाईचारे जो बुनियादु विझूं त सारो माहौल मिठो ऐं सुठो बणिजी वेंदो।

समय जा ॻाल्हि कंदासीं यादगिरी जी त वक़्त जी ज़रूरत मूजिब अॻु में पढ़ियल शयूं विसरी वेंदियूं आहिनि ऐं कंहिं बि मवाद खे यादि करण जो हिकु बहितरीन तरीक़ो इहो बि आहे त उनखे पंहिंजे हथनि अखरनि सां पंहिंजो लिखियो पियो वञे सिर्फ़ हिकड़ो दफ़ो न पर बार बार पियो लिखजे त एतिरे क़दुरु जो उहो मवाद ज़हन नशीन थी वञे थो। ईअं करण सां मवाद असांजे ज़हन में महफ़ूज़ थी वञे थो। जेकॾहिं असीं शागिर्द आहियूं त इम्तिहानी हाल में सवालनि जे जवाबनि खे लिखंदे असांखे कंहिं बि परेशानी ऐं मुंझार जो शिकार थियणो कोन पवंदो त यादगिरी जे लाइ असांखे लिखणु तमामु ज़रूरी आहे।

अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त अमेरिकी अवाम जे टैक्स जे पैसनि मां हथियार ख़रीद कंदड़ इसराइल मुफ़ाहिमती यादाश नामे ते कहिड़े मुंहं सां तनक़ीद करे रहियो आहे। इसराइल खे अमल जे अमल जो एतमला क़बूल न आहिनि। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग दौरान संदसि चवणो त वाइदे बाद हिकु राति में आदम हरबुद मां 1,20,00,000 बैरल खां वधीक तेल जी फरहमी थी चुकी आहे। ईरान कंहिं बि जहाज़ ते हमिलो नाहे कयो। ईरान आदम हरबुद खोलण वारी शर्त जी पासदारी करे रहियो आहे। जे डी वेंस जो इहो बि चवणो त ईरान खे $300 अरब जी फरहमी वारनि ख़बरुनि में सदाकत नाहे। तहरान खे $1 बि न मिलंदो। ईरान खे इहे फ़ाइदा तॾहिं मिलंदा जॾहिं पंहिंजे रवैये में तब्दीली आणींदो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान खे कौमी असेंबली ऐं सेनेट में नुमाइंदगी ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरीन खे एहतजाज ख़तम करण ऐं वापसि ॻाल्हियूं करण जो मशवरो। आज़ाद कश्मीर में थींदड़ चूंडुनि में हिसो वठण जो ऐलान कौमी असेंबली में ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त आज़ाद कश्मीर खे बि नओं मंशूर ऐं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ॾियणी पवंदी। आज़ाद कश्मीर जो मसइलो धरणे सां न पर कानून साज़ी सां हल थींदो। आज़ाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन करणो पवंदो। असां आज़ाद कश्मीर खे वधीक नुक़सान थियण न ॾींदासीं। महाजरनि जूं सीट्स बंदूक जे दौर ते ख़तम नथियूं करे सघजनि। घणो थियो, हाणे एहतजाज ख़तम कयो। एक्शन कमेटी पहिरें मुआदे ते अमल करे ऐं चूंडनि तरफ़ वञे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझु थी रहियो आहे इन सां कश्मीर कास खे नुक़सान थिए पियो।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हाँ बुड़ी 331 5 7 86
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

साईं जा प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं मां वहां जो मेज़बान नेमत अलाह जुणे जो साईं मुंहिंजा शऊर अलाह ताला तरफ़ां असांजे लाइ अनमोल तोहफ़ो आहे। उहा शऊरी कैफ़ियत ई हूंदी आहे जंहिंमें असां फ़ैसिले करण जे क़ाबिल हूंदा आहियूं। जेकॾहिं उहो शऊर असां खां खसिजी वञे त पोइ भले ऐं बुरे जो फ़र्क़ु महसूस ई नाहे थींदो। जॾहिं असां तेज़ तर कावड़ में हूंदा आहियूं यानी गुस्से जी कैफ़ियत शिदत सां हावी थी वेंदी आहे त उन्हनि लम्हनि में असां शऊरी हालत विञाए वेहंदा आहियूं ऐं लाशौरी में जहिड़ा झगड़ा दोस्तनि अज़ीज़नि सां नाराज़गी रहंदी आहे। वरी जॾहिं कैफ़ियत तब्दील थींदी आहे त पोइ पंहिंजो पाण खे बि शर्मसार महसूस कंदा आहियूं। तंहिं करे शऊर वारी कैफ़ियत खे सदाई लाइ लाशौरी वारी कैफ़ियत में छॾे न ॾिजे। जेकॾहिं ईअं असां छॾे ॾींदासीं त पोइ वॾे नुक़सान जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो।

0: जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह जारी सारी है तवाजो असो साथ रो ठीक यारह वागे तई इन तो वरी हलूँ पा कमर्शियल ब्रेक की तरफ
1: सचल की सर मस्त धरती
2: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

शयूं जा ॻाल्हि कंदासीं अलाह जे इश्क जी, जीअं शमा ते परवानो पतंग परे खां पहुची अची पचंदो आहे। अलाह साईं सां बि बाने खे ईअं दिलि लॻाइणु घुर्जे जीअं इरशाद इलाही आहे त बाना तूं मूंखे यादि कर त मां तोखे यादि कयां। जेकॾहिं मालिक हक़ीक़ी बाने खे यादि फरमाए त बानो वॾो ख़ुशि नसीब आहे। पंहिंजे रब पाक सां प्यार वारो नातो जोड़ियूं, जीअं चंड सां चकोर प्यार कंदे चंड ॾांहुं वञी कोशिश करे थो, पहुचण जी कोशिश करे थो ऐं थकिजी बि नाहे पवंदो, पर अफ़सोस जो उते पहुची नाहे सघंदो। पर पाण बि फना थी वञूं ऐं अहिड़ी तरह असां बि अलाह साईं जे इश्क में फना थी वञूं, पोइ पक समझो त इंसान कामयाबु आहे ऐं पाण खटी वियासीं।

साईं जा ज़माने जा ॾिनल ज़ख़्म भली केतिरा बि गहरा छो न हुजनि, पर वक़्त जी मरहम आहिस्ते आहिस्ते सभिनी ज़ख़्मनि खे भारी ठीकु करे छॾींदी आहे। छो त इंसान ॾाढो मज़बूत आहे, हर बर्दाश्त करण जी सघ रखे थो। ज़ुल्म जा तूफ़ान बि हिन खे लोॾे कोन था सघनि। वरी जे हिमत हारे त पोइ कख खां बि परे। सियणनि सच चयो आहे त पंहिंजा ज़ख़्म उन्हनि खे न ॾेखारियो, जन वटि अव्हां जे ज़ख़्म जी मरहम ई कोन्हे। ॾुख अल्लाह ताला जे प्यार जा ककर आहिनि, तंहिं करे ॾुखनि सां बि प्यारु कयो, छो जो ॾुखनि जे ज़ख़्मनि मंझां मज़बूत दिलियूं जनम वठंदियूं आहिनि।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: स्विट्जरलैंड जो दौरा मुलतवी, व्हाइट हाउस की तस्दीक सुइस इख्तियारनि मूजिब बदन साख में अमेरिका ईरान विच में थियल गालियूं न थींदियूं। जंगबंदी मुआहदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया, इसराइली हमलनि में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई जख़्मी। लबनान इख़्तियारनि मूजिब इसराइली फ़ौज नपटिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ हिते न हटंदी, गज़ा जीअं लबनान बाबे ख़तरा ख़तम कया वेंदा।

अमेरिकी दिफा वारे वजीर जो यूरोप में पंहिंजी फौज जी मुक़ररी बाबति जाइज़ो वठण जो ऐलान। ईरान सां जंग दौरान अमेरिकी फौज ते पाबंदियूं लॻाईंदड़ यूरोपी मुल्कनि ते बि तनक़ीद। ब्रसल्स में यूरोपी यूनियन जे दिफा वारनि वज़ीरनि जी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे पीट हेक्सेथ चयो त ही अहिड़ो जाइज़ो हूंदो जंहिं में कुझु मुल्क कामयाब ऐं कुझु नाकाम थींदा। पीट हेक्सेथ तकरीर दौरान कुझु यूरोपी मुल्कनि खे मुफ़्तखोर करार ॾींदे अमेरिका खां फ़ाइदा खणण जो बि इल्ज़ाम लॻायो।

0: अफ्रीकी मुल्क नाइजर जे एयरपोर्ट ते हथियारबंदनि जो 5 महीननि दौरान बियो हमिलो, 35 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सचल की सरमस्त धरती,
3: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: सुना साई, कुछ खबर अथव?
5: छा थियो सोणी?
4: ॿिनि ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे, नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
5: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
4: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
5: न न सोणी।
6: आप सुन रहे हैं,
7: आप सुन रहे हैं
6: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
8: सुनते रहो GAFM 90.4।
9: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
10: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
10: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
10: जी हा, 2315525786।
9: GAFM रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315257786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

साहिन बाद अमेरिका ईरान विच में अजड़ी थियल गालियों मुलतवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छी अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो भी स्विट्जरलैंड जो दौरो मुलतवी। स्विस इख़्तियारनि मूजिबि बजन स्टाक में अमेरिका ईरान विच में अजड़ी थियल गालियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्जरलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो।

जंगबंदी मुआहदे बावजूद इसराइल जहां लबनान से हमला न रुकिया। इसराइली हमलन में 16 शहरी शहीद, केतरा ही जख्मी। लबनान इख्तियार मूजिब इसराइली फौज नफ्तिया से बमबारी कई है, जैसे नतीजे में केतरा ही घर भी तबाह थी वाया। इसराइली हमलन के नतीजे में 16 शहरी भी शहीद थिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू है तो इसराइली फौज लबनान के बफर जोन का नहटंदी, गजा जहां लबनान में भी खतरा खत्म कया वा।

सुभाणे पेट्रोल जी क़ीमत में वॾी घटाई जो इम्कान। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमत में 55 रुपयनि ताईं घटाई करण ते गौर करण लॻी। ज़रियनि जो चवण आहे त नाणे वारी वज़ारत लेवीज़ वधाइण ऐं पेट्रोल 20 रुपया ऐं डीज़ल 36 रुपया फी लीटर सस्तो करण जी ख़्वाहिशमंद आहे। हतमी फ़ैसिलो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ कंदो।

ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरना। आनंदो में पाणी डिखोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जी टे ॾींहं बि अलामती भुख हड़ताल। आबादगारनि, हारियुनि, पोहरतनि, शागिर्दनि ऐं शहरनि जी भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगारनि मूजिबि बदीन ज़िले में पाणीअ जे बहरान सबबि ढोर बि उञ विघे मरी रहिया आहिनि।

कंबर वेझो जमीन मां मिटी खणण था बिंदुरनि में झेड़ो नौजवान कतल बजना जख्मी ॻोठ अलीबख्श पवर में ज़रई ज़मीन मां मिटी खणण था पवर बिरादरी जी बिंदुरनि में झेड़ो थियो फायरिंग जे नतीजे में बिलावल पवर मारिजी वियो मुजीब ऐं आज़म पवर ज़ख्मी थियो पुलिस मूजिब ॿई धुरियूं पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि कंधकोट में बि ज़मीन जे मामले तां बिंदुरनि में झेड़ो हिकु ॼणो ज़ख्मी ॻोठ बादल खां सब्ज़ोई में झेड़े दौरान फायरिंग इमरान सब्ज़ोई ज़ख्मी थियो

मटियारी भरसा शाहपुर दरपुर थाने जे हदम में कम दौरान भितकरण सबब औरत दबजी फौत गोठ सिंगार में कम दौरान भितकरण सबब रसूल बख्श खोसो दबजी फौत थी वियो।

कैरपुर में मलाह बिरादरी के चंगे मुर्तज़ा जा कातिल गिरफ्तार न थियण खिलाफ़ SSP ऑफिस वारो धरणो। मुजाहिरन जो गुलाम नबी मलाह जा कातिल गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। मुजाहिरन मूजिब जवाबदारनि हमिलो करे असांजे चंगे मुर्तज़ा गुलाम नबी मलाह खे क़तलु कयो आहे। पुलिस कुझु ॿुधण जे लाइ तयारु नाहे, जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। ऐं अफ्रीकी मुल्क नाइजर जे एयरपोर्ट ते हथियारबंदनि जो 5 महीननि दौरान ॿियो हमिलो। 35 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578 6।
3: जी हां 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़। सिंध की
1: आवाज़। मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
2: हुआ है खात्मा ईमान पर तेरा नूरी, जबी है खुल्द के हूरो कसूर आंखों में। ताजदार अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत मजहर गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क इरफान से भरपूर और अजमत व मोहब्बत खुदा में सरशार कलाम समात फरमाए।

0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां अॼु राति ते तेल जी क़ीमतुनि में वॾी घटिताई करण जो ऐलान। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त ईरान ऐं अमेरिका विच में मुफ़ाहिमती यादाश्त ते सहियूं पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहिनि। इस्लामाबाद वाइदे खे हथ में शिकिल ॾियारण में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम किरदार अदा कयो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो किरदार बि साराह जोॻो रहियो। ईरान अमेरिका वाइदे सां दुनिया में पाकिस्तान जो वक़ार वधियो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तान ऐं क़ौम जा थोरा मञा, मूंखे पाकिस्तान जे दौरे जी दावत ॾिनी। क़ौमी वहदत जे लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदीअ सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। जंगबंदीअ सां आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थियो आहे। अवाम खे पेट्रोल जे मद में अॼु राति वॾो रिलीफ ॾिनो वेंदो। इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती यादाश्तनामे ते सहन बाद अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं मुलतवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छॾी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुलतवी कयो वियो। स्विस इख़्तियारनि मूजिब बर्जनस्टॉक में अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो। जंगबंदी वाइदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनान इख़्तियारनि मूजिब इसराइली फ़ौज नफ्तिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ न हटंदी। गज़ा जीअं लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
1: Is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: America naib sadr JD Vance Israeli waziran te sakht tanqeed. Israel te America ehsanan jo zikr kar chhadyo. JD Vance chayo ta America hathyar Israel ke bachaye raha hain. Israeli wazir duniya mein pandi akele ae taqat aur ittehad ke nishano banaye raha hain. Sadr Trump te tanqeed kandar Israeli waziran ke hosh kha kam uthan khuje. Sadr Trump te tanqeed karan badran zameeni haqeeqatun jo jaizo wathan. जेडी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

0: मटियारी भरसा शाहपुर दर्प थाने जद में कम दौरान भिति किरण सबब पोरत दबिजी फौत गोठ सिंगार में कम दौरान भिति किरण सबब रसूल बख्श खोसो दबिजी फौत थो। खैरपुर में मलाह बिरादरी के चंगे मुड़स जहा कातिल गिरफ्तार थे खिलाफ एसएसपी ऑफिस आदो धरणो मुजाहरीन जो गुलाम नबी मलाह जहा कातिल गिरफ्तार करने जो मुतालबो मुजाहरीन मूजिब जवाबदार हमलो करे असाने चंगे मुड़स गुलाम नबी मलाह के कतल कयो पुलिस कुछ बुझण लाइ तैयार न आहे जवाबदार गिरफ्तार कया वञन। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के एयरपोर्ट से हथियारबंदन जो पंज महीनों दौरान बो हमलो पंजटी जना मार वया केतरा ही जख्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252586।
4: जी हां 2131525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।
5: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीं जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मा
1: It's 1:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।
1: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकां जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, 2315525786।
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: जंगबंदी मुआहदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनानी इख़्तियारनि मूजिबि इसराइली फ़ौज नपतिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ न हटंदी। गज़ा जे लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only pad that I have anywhere left in the entire world.
0: American Naib Sadr J.D. Vance Israeli wazirun te sakht tanqeed, Israel te America ehsanan jo bhi zikr kare chajo. J.D. Vance chayo ta America hathiyar Israel ke bachaye raha hain. Israeli wazir duniya mein panje akele ae taaqatwar itihadi ke nishano banaye raha hain. Sadr Trump te tanqeed kandad Israeli wazirun ke hosh kha kam uthan guje. सदर ट्रंप ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि। जे डी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

0: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीं जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
1: शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे, शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे, खालिक जो महबूब मोहम्मद सोने के।

मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जदे पढ़ू था दरूद सजन ते पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाध फरमाते हैं।

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपसे गुजारिश है, जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर से है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें, मिलकर।

ऐसा नारा लगाएं इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद, हैदर वरगा सकीन कोई वेखी आए जग सारा सफर दा बेड़ा पार।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे हो नारे हैदरी।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: तारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां अॼु राति ते तेल जी क़ीमतुनि में वॾी घटिताई करण जो ऐलान। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त ईरान ऐं अमेरिका विच में मुफ़ाहमती यादाश्त ते सहियूं पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहिनि। इस्लामाबाद वाइदे खे हतमी शिकिल ॾियारण में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम किरदार अदा कयो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो किरदार बि साराह जोॻो रहियो। ईरान अमेरिका माहिदे सां दुनिया में पाकिस्तान जो वक़ार वधियो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तान ऐं क़ौम जा थोरा मञा, मूंखे पाकिस्तान जे दौरे जी दावत ॾिनी। क़ौमी वहदत जे लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदी सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। जंगबंदी सां आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थियो आहे। आवाम खे पेट्रोल जे मद में अॼु राति वॾो रिलीफ ॾिनो वेंदो। क़ौमी असेंबली ईरान अमेरिका माहिदे ते क़ौमी क़यादत खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर समेत ॿी क़यादत खे भेटा पेश कई वई। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाशनामे ते सहियुनि बाद अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं मुलतवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छॾी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुलतवी कयो वियो। स्विस इख़्तियारनि मूजिब बजट स्टॉक में अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो। जंगबंदी माहिदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनानी इख़्तियारनि मूजिब इसराइली फ़ौज नफ़्तिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली

0: लबनान जे बफर जोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जियां लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: अमेरिकी नायब सचिव जो भी जिक्र करे छियो जेडी वेंस यद अमेरिकी हथियार इसराइल के बचाए रहा है। इसराइली वजीर दुनिया में पंजे अकेले ताकतवर इत्तेहाद के निशानो बनाए रहा है। सदर ट्रंप ते तनकीद कंदड़ इसराइली वजीरन के होश का कम वठन घुर्जे। सदर ट्रंप ते तनकीद करण बदरा जमीनी हकीकतन जो जायजो वठन। जेडी वेंस का पहरी सदर ट्रंप भी इसराइल ते नाराजगी जाहिर कर चुको है।

वफाकी घर वज़ीर मोहसिन नकवी जी सदारत हेठ पासपोर्ट ऐं इमीग्रेशन बाबति इजलास। हुकूमत जो पासपोर्ट खे मुकमल तौर ते ई पासपोर्ट तरफ़ मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो। मोहसिन नकवी चयो त ई पासपोर्ट ते मुंतकिली सां पासपोर्ट में थींदड़ फ्रॉड रोके सघिबो। सिंधाई कोर्ट गदले पाणी जी फरहमी ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते घोटकी जे डीसी खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। 7 जुलाई ते रिपोर्ट बि पेश करण जो हुकुम। अदालत चयो त आइन जे आर्टिकल 9 तहत साफ़ ऐं महफ़ूज़ पाणी हर शहरीअ जो बुनियादी हक़ आहे। मामिलो इंसानी वक़ार, सिहत ऐं ज़िंदगीअ सां सिधो सओं लाॻापियल आहे। धुरनि खे नोटिस जारी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। निंदो में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जी 3 ॾींहं बि अलामती भुख हड़ताल। आबादगारनि, हारियुनि, परहतनि, शागिर्दनि ऐं शहरनि जी भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगारनि मूजिबि बदीन ज़िले में पाणीअ जे बुहरान सबबि ढोर बि उञ विघे मरी रहिया आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।

0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: फैन। White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM नेटवर्क ते।
0: अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

इसराइल ते अमेरिकी अहसाननि जो बि ज़िक्र करे छॾियो। जेडी वेंस चयो त अमेरिकी हथियार इसराइल खे बचाए रहिया आहिनि। इसराइली वज़ीर दुनिया में पंहिंजे अकेले ऐं ताक़तवर इतिहादी खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। सदर ट्रंप ते तनक़ीद कंदड़ इसराइली वज़ीरनि खे होश खां कमु वठणु घुर्जे। सदर ट्रंप ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि। जेडी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

वायदे की भंजकड़ी जो जवाब तबाह कदड़ हों। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर कालेबाब खबरदार कर सुप्रीम लीडर के हुक्म से अमल करण का पाबंद आयू तय थल वायदे के समूरन शिकुन अमल थे घुर्जे जैसे बी धुर बीहर जंग तरफ बधी तो जवाब पैरी का सख्त हों। ईरान अमेरिका गालियों में काबे रंड कना है। ईरान अमेरिका विच में गालियों महरमल हराम सबब देर जो शिकार थियो आहिं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त जुलाई के पहले हफ्ते में शहीद आयतुल्ला खामनाई की तदफीन थींदी। 60 दिन में मरहलेवार गालियों वारो अमल मुकम्मल थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां अॼु राति तेल जी क़ीमतुनि में वॾी घटिताई करण जो ऐलान। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त जंगबंदीअ सां आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थियो आहे। हुकूमत पेट्रोल सस्तो थियण ते रिलीफ ॾियण जो वाइदो कयो हो। अवाम खे पेट्रोल वॾो रिलीफ ॾिनो।

सिंध असेंबली में अपोजिशन जी बजट ते सख्त तनक़ीद, करप्शन रोकणु ऐं आवाम जे फलाह वारनि मनसूबनि ते कम करण जो मुतालबो। एमकेएम जे आमिर सिद्दीकी चयो त सिंध हुकूमत अॼु ताईं पेश कयल कंहिं बि बजट ते अमल नाहे कयो। सखर हैदराबाद जी अस्पतालुनि जी हालत ख़राब आहे। नंढनि आबादगारनि जे लाइ बजट में कुझु बि नाहे। शारिक जमान चयो त सिंध खे 18 सालनि दौरान वफ़ाक खां 71,000 अरब मिलिया आहिनि, पर आवाम ते ख़र्च न आहिनि थिया। कराची खां कश्मीर ताईं रुगो मसला ई मसला आहिनि, केरु हल करण वारो नाहे। हुकूमती एमपीए बजट जी साराह कंदे चयो त सिंध हुकूमत बहितरीन बजट पेश कई आहे, अवाम जी तरक़ीअ जे लाइ पीपल्स पार्टी कम कंदी रहंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि पासपोर्ट ऐं इमिग्रेशन बाबति इजलास। हुकूमत जो पासपोर्ट खे मुकमल तौर ते ई पासपोर्ट तरफ़ मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो। मोहसिन नक़वी चयो त ई पासपोर्ट ते मुंतकिली सां पासपोर्ट में थींदड़ फ्रॉड रोके सघिबो। अफ़गान तालिबान जे पाकिस्तान में ड्रोन हमलनि वारी दावा कूड़ी निकिती। पाकिस्तान हिकु ड्रोन किराइण जी तस्दीक करे छॾी। सुस्तमा वारी वज़ारत अफ़गान तालिबान जे ड्रोन हमलनि जी दावा खे रद्द कंदे चयो आहे त अफ़गान तालिबान केपी ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़नि में दाइश जे मुबैना थाकनि खे ड्रोन सां निशानो बणाइण जी दावा कई हुई। दाइश समेत केतिरियूं ई दहशतगर्द तंज़ीमूं अफ़गान तालिबान जे कंट्रोल हेठि आयल इलाइक़नि में मौजूद आहिनि। अफ़गान तालिबान पाड़ेसरी मुल्कनि में दहशतगर्दनि जी पुठिभराई खे लिकाइण जे लाइ कूड़ा बयान जारी करे रहिया आहिनि। तालिबान जो हिकु ड्रोन पाकिस्तान जी हदुनि में खैबर भरिसां दाख़िल थियो हो, जंहिंखे एयरफोर्स तबाह करे छॾियो।

सिंध हाई कोर्ट गदली पानी की फरहमी खिलाफ दरख्वास्त घुटकी के डीसी की जाती हैसियत में तलब कर वरतो। 7 जुलाई से रिपोर्ट भी पेश करने जो हुक्म। अदालत चयो आईन के आर्टिकल 9 तहत साफ ए महफूज पानी हर शहरी जो बुनियादी हक है। मामलो इंसानी वकार सेहत ए जिंदगी से सीधो सो लागे पल है। धुरन की नोटिस जारी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज। GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेस और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

साहब ससुरी खां पुनू देर वठी विया हाणे सिरकियूं चवनि त पंहिंजो भाउ वठी विया तुंहिंजो छा खणी विया माठि करे सब्र करे वेही रह।

सारे जगह सबसे कोनो बुझा हलने लगी जेका माटे जी माई माउस उन्हें चोदा मां आऊं तो सा हला बेटा साहब जो जय माई तू का नहीं।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: ईरान ऐं अमेरिका विच में मुफ़ाहमती यादाश्त ते सयूं पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहिनि। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त इस्लामाबाद वाइदे खे हतमी शिकिल ॾियारण में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो अहम किरदार आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो किरदार बे साराह जोॻो रहियो। ईरान अमेरिका वाइदे सां दुनिया में पाकिस्तान जो वक़ार वधियो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तानी क़ौम जा थोरा मञा, मूं खेसि पाकिस्तान जे दौरे जी दावत ॾिनी। क़ौमी वहदत लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदी सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनेई जी आख़िरी रस्मुनि में शिरकत जी दावत ॾिनी आहे। आख़िरी रस्मूं 3-4 जुलाई ताईं थींदियूं। पाकिस्तानी वफ़द बि शरीक थींदो। क़ौमी असेंबली ईरान अमेरिका वाइदे ते क़ौमी क़यादत खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर समेत ॿी क़यादत खे भेटा पेश कई वई। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते सहन बाद अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं मुलतवी। व्हाइट हाउस तसदीक करे छॾी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुलतवी कयो वियो। स्विस इख़्तियारनि मूजिब बर्जनस्टॉफ में अमेरिका ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो। जंगबंदी मुआहदे में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनानी इख़्तियारनि मूजिबि इसराइली फ़ौज नफ़्तिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। हिज़्बुल्लाह जे जवाबी हमलनि में 14 इसराइली फ़ौजी मारिजी विया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफ़र ज़ोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जीअं लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the people I have anywhere left in the entire world.
0: American Naib Sadr J.D. Vance Israeli waziran te sakht tanqeed. Israel te American ehsanan jo bhi zikr kar chhadyo. J.D. Vance chayo ta America hathiyar Israel ke bachaye raha hain. Israeli wazir duniya mein pande akele ae taqatwar ittehadi ke nishano banaye raha hain. Sadr Trump te tanqeed kandar Israeli waziran ke hosh khan kam wathan ghurje. सदर ट्रंप ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि। जे डी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

सिंध असेंबली में अपोजिशन जी बजट ते सख्त तनक़ीद, करप्शन रोकण ऐं अवाम जे फलाह वारनि मनसूबनि ते कम करण जो मुतालबो। एम क्यू एम जे आमिर सिद्दीकी चयो त सिंध हुकूमत अॼु ताईं पेश कयल कंहिं बि बजट ते अमल नाहे कयो। सखर हैदराबादी अस्पतालुनि जी हालत ख़राब आहे। नंढनि आबादगारनि जे लाइ बजट में कुझु बि नाहे। शारिक जमाल चयो त सिंध खे 18 सालनि दौरान वफ़ाक खां 71,000 अरब मिलिया आहिनि, पर अवाम ते ख़र्च नाहिनि थिया। कराची खां कश्मीर ताईं रुगो मसला ई मसला आहिनि, केरु हल करण वारो नाहे। हुकूमती एम पी बजट जी साराह कंदे चयो त सिंध हुकूमत बहितरीन बजट पेश कई आहे, अवाम जी तरक़ीअ जे लाइ पीपल्स पार्टी कम कंदी रहंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि पासपोर्ट ऐं इमिग्रेशन बाबति इजलास। हुकूमत जो पासपोर्ट खे मुकमल तौर ते ई पासपोर्ट तरफ़ मुंतक़िल करण जो फ़ैसिलो। मोहसिन नक़वी चयो त ई पासपोर्ट ते मुंतक़िली सां पासपोर्ट में थींदड़ फ्रॉड रोके सघिबो। अफ़गान तालिबान जी पाकिस्तान में ड्रोन हमलनि वारी दावा कूड़ी निकिती। पाकिस्तान हिकु ड्रोन किराइण जी तस्दीक करे छॾी। सुसमा वारी वज़ारत अफ़गान तालिबान जे ड्रोन हमलनि जी दावा खे रद्द कंदे चयो आहे त अफ़गान तालिबान केपी ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़नि में दाइश जे मुबैना थाकनि खे ड्रोन सां निशानो बणाइण जी दावा कई हुई। दाइश समेत केतिरियूं ई दहशतगर्द तंज़ीमूं अफ़गान तालिबान जे कंट्रोल हेठि आयल इलाइक़नि में मौजूद आहिनि। अफ़गान तालिबान पाड़ेसरी मुल्कनि में दहशतगर्दनि जी पुठिभराई खे लिकाइण जे लाइ कूड़ा बयान जारी करे रहिया आहिनि। तालिबान जो हिकु ड्रोन पाकिस्तान जी हदुनि में खैबर भरिसां दाख़िल थियो, जंहिंखे एयरफोर्स तबाह करे छॾियो।

0: सिंध हाई कोर्ट गदले पानी की फरहमी खिलाफ दरख्वास्त से घुटकी के डीसी की जाती हैसियत में तलब कर वरतो। 7 जुलाई से रिपोर्ट भी पेश करने जो हुकुम। अदालत चयो आइन के आर्टिकल 9 तहत साफ ए महफूज पानी हर शहरी जो बुनियादी हक है। मामलो इंसानी वकार सेहत ए जिंदगी से सीधो सौ लागे पर धुरन की नोटिस जारी।
1: आप सुन रहे थे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: माहिया हर करे,

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

वायदे जी भंजकड़ी जो जवाब तबाह कंदड़ हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालेबाब खबरदार कंदे चयो आहे त सुप्रीम लीडर जे हुकुम ते अमल करण जा पाबंद आहियूं। तय थियल वायदे जे समूरनि शिकुनि ते अमल थियण घुर्जे। जेकॾहिं ॿी धुर ॿीहर जंग तरफ़ वधी त जवाब पहिरीं खां वधीक सख़्त हूंदो। ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि में का बि रंडक न आहे। ईरान ऐं अमेरिका विच में ॻाल्हियूं महरमल हराम सबब देर जो शिकार थियूं आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त जुलाई जे पहिरें हफ़्ते में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई जी तदफ़ीन थींदी। 60 ॾींहनि में मरहलेवार ॻाल्हियुनि वारो अमल मुकमल थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां अॼु राति तेल जी क़ीमतुनि में वॾी घटिताई करण जो ऐलान। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त जंगबंदीअ सां आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थियो आहे। हुकूमत पेट्रोल सस्तो थियण ते रिलीफ ॾियण जो वाइदो कयो हो। आवाम खे पेट्रोल जे मद में अॼु राति वॾो रिलीफ ॾिनो वेंदो।

0: सिंध असेंबली में अपोजिशन जी बजट ते सख्त तनक़ीद, करप्शन रोकण ऐं अवाम जे फलाह वारनि मनसूबनि ते कम करण जो मुतालबो। एम क्यू एम जे आमिर सिद्दीकी चयो त सिंध हुकूमत अॼु ताईं पेश कयल कंहिं बि बजट ते अमल नाहे कयो। सखर हैदराबाद जी अस्पतालुनि जी हालत ख़राब आहे। नंढनि आबादगारनि जे लाइ बजट में कुझु बि नाहे। शारिक जमान चयो त सिंध खे 18 सालनि दौरान वफ़ाक खां 71,000 अरब मिलिया आहिनि, पर अवाम ते ख़र्च न आहिनि थिया। कराची खां कश्मीर ताईं रुगो मसला ई मसला आहिनि, केरु हल करण वारो नाहे। हुकूमती एम पी एस बजट जी साराह कंदे चयो त सिंध हुकूमत बहितरीन बजट पेश कई आहे, अवाम जी तरक़ी जे लाइ पीपल्स पार्टी कम कंदी रहंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि पासपोर्ट ऐं इमिग्रेशन बाबति इजलास। हुकूमत जो पासपोर्ट खे मुकमल तौर ते ई पासपोर्ट तरफ़ मुंतक़िल करण जो फ़ैसिलो। मोहसिन नक़वी चयो त ई पासपोर्ट ते मुंतक़िली सां पासपोर्ट में थींदड़ फ्रॉड रोके सघिबो।
1: डिसाइड करना मुश्किल है, लेकिन एयरलाइन कौन सी होगी ये हम सबको पता है। फ्लाई जनरल
0: पाकिस्तान एक ड्रोन किराने की तस्दीक कर छी। सुसमा वाली वजारत अफगान तालिबान के ड्रोन हमलन की दावा के रद्द करते है। अफगान तालिबान केपी ए बलोचिस्तान के सरहदी इलाकन में दाइश के मुबैना थाकन के ड्रोन से निशानो बनाने की दावा कई हुई। दाइश समेत केतरी ही दहशतगर्द तंजीमू अफगान तालिबान के कंट्रोल हेठ आयल इलाकन में मौजूद है। अफगान तालिबान पाड़ेसरी मुल्क में दहशतगर्दन की पुठ भराई के लिकायण के लिए कूड़ा बयान जारी कर रहा है। तालिबान एक ड्रोन पाकिस्तान की हदन में खैबर भरसा दाखिल थो, जैसे एयरफोर्स तबाह कर छो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ 3135525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

झंझे अखेजी अंतराड़ खा ये झंझे अखेजी हो मतलब उधर से मतलब को

حق مشه امیر دارا قید کمند میں گرفتارا دارا حق مشه

0: kind of commandame. You're a good ara. It's a day who said, Nahani, Kaya, Hazar of Penny. It's a day who said, Nahani, Kaya, Hazar of Penny. Okay, get over the lean. Okay, get over the lean. Money, Tara, Maranago, Maranago.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के मामर
1: M88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 3135525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पकड़ वाली जी।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
2: पेट्रोल 74 महंगाई सटियल अवाम के वो रिलीफ। वजीर आजम पेट्रोल 74 ए डीजल 67 रुपया फी लीटर सस्तो कर छो। नवा अघ रात 12 वगे का लागू थी वा। शाहबाज शरीफ चाहे तो लात का पेट्रोल 373 रुपये में घटी फी लीटर 299 रुपया ए डीजल 378 रुपये में घटी 311 रुपया फी लीटर थी वो। जो वायदो कौम से कयो हो अलहमदुल्ला वो पूरा कर रहा आय। तेल की अघन में घटताई जो फायदो बिना देर अवाम के मुंतकिल कर रहा आय। मुश्किल वक्त में अवाम जो सब्र कर उन मिसाल न तो मिले।

0: तो 100% पीछे।
1: सिर्फ स्मेल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एगेन योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: ईद ते सिर्फ चाहे नाहे ठहंदी, महफिलों सजंदियों हैं। टपाल मेजबान ईद उल अज़हा जो असली मेजबान।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network, सिंध की आवाज. अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज. GFM 90.4.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेट
0: GAFM 88 सिंध की। अपना शहर अपना घर मातली और FM 90.4।

बजू किसी माखे लगी मेरे घर में अखू यार अजीब बजून किसी माखे लगी मेरे घर में मुझे माना निशान मारो मुर्गी माना निशान मारो मुर्गी माशू।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।